0: This is Sunrise Retro, London's Retro Asian Mix.
1: मुझे मत दुआ दे कि मैं बद्दुआ हूँ, नहीं तेरे काबिल कि मैं बेवफा हूँ।

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

0: Sunrise Retro.
1: Sunrise Retro.
2: ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाए?

0: Hi, this is Pablo. Don't forget to join me on our sister station, Sunrise Radio, on Sundays from 4 p.m. on 963 and 972 a.m. in London, nationwide on DAB, online at sunriseradio.com, or your home smart speakers, and on the Sunrise Radio app.
1: अरे देख रहे हैं?
2: तो देखने दो.
1: जल भी रहे हैं?
2: अरे तो जल ले तो.
1: खुली सड़क है बाबा.
2: तो क्या हुआ पाई?
1: हाँ, तो हट जाए.
2: हो जाए.

0: This is Sunrise Retro, London's Retro Asian Mix.
1: Ye hai Sunrise
0: Retro.
2: सुनो सुनो अरे सुनो सुनो ए भाई और बहनो अरे मगन भाई छगन भाई सांबड़ो रे सांबड़ो ओ राघोबा ओ धोंडीबा आई का ओए जर्नल सिंह अरे तुझी भी सुनो पापे।

0: Sunrise Retro.
1: Sunrise Retro London के Retro Asian Mix को सुनने के लिए शुक्रिया. याद रखिएगा, हमारे सिस्टर स्टेशन Sunrise Hits को भी आप सुन सकते हैं. The UK's smoothest Asian hits nationwide on DAB, on the free Sunrise Radio app और online sunriseradio.com पर.
2: ये है Sunrise Retro.

0: बता दूं? वो यहीं पर
1: है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: Sunrise Retro.
1: My ears, best piece of musical equipment I own. They've been with me through everything, even the 90s. Back when you'd hear about parties from photocopied flyers, before outdoor raves moved indoors. And now, the music's changed, but I wanted to make sure my ears had them. So I did the free online hearing screener from Specsavers and got on the test list. Only took 3 minutes. It's like my own little sound check. Try Specsavers free online hearing screener. Visit the website to find out more. Hearing screener is not a diagnosis.
2: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
3: Just dropped. The brand new TUI Smiles Rewards Club. Join for free today to unlock exclusive members-only deals, personalized rewards, and chances to win amazing prizes. Get even more from your holiday. Join for free today. TUI. Big rewards, big smiles. Atal and Abta protected. T's and C's apply. See website for details.
4: Is the cost of your home insurance going through the roof? Maybe it's time to move to Tesco Insurance. Tesco Home Insurance has been recommended by Which? Since September 2025. And if you've a Tesco Club Card, it unlocks an exclusive discount. Over 500,000 people have made themselves at home with us. So why not see how much you could save with your Club Card? Just search online for Tesco Home Insurance. Every little helps.
5: सनराइज रेट्रो लंदन के रेट्रो एशियन मिक्स को सुनने के लिए शुक्रिया याद रखिएगा हमारे सिस्टर स्टेशन सनराइज हिट्स को भी आप सुन सकते हैं द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स नेशनवाइड ऑन डीएबी ऑन द फ्री सनराइज रेडियो ऐप और ऑनलाइन sunriseradio.com पर
6: ये है सनराइज रेट्रो

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी खोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: ज्यादा वफादार है। खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।

जरा अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूँ।

0: Sunrise Retro.
1: Attention!
2: Craving something truly delicious? Well, I've got some amazing news. For this September only, a free £30 credit. You can now get General Bilimoria's Canteen, serving fresh your favourite authentic Indian dishes, delivered right to your door. Just search General Bilimoria's Canteen on the Google Play Store or Apple App Store to download our brand new app and order your next incredible meal. No delivery fee, no service charge when you order through the GB Canteen app. And for this September only, when you download the app, you will receive a generous £30 credit. Terms and conditions apply.
3: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड.
4: Thank you for tuning into Sunrise Retro, London's Retro Asian Mix. Don't forget to tune into our sister station, Sunrise Radio, on 963 and 972 AM in London, nationwide on DAB, worldwide via sunriseradio.com, on the free Sunrise Radio app, or for your home smart speakers and on the Radio Player and Nation Player app.
5: Ye hai Sunrise Retro.

0: tera.
1: This is Sunrise Retro, London's Retro Asian Mix.
2: होठों पे रंगत है दिल में मोहब्बत है क्या जिसमें औरत है बस जन्नत ही जन्नत है।

तारों में चमक, फूलों में रंगत ना रहेगी, अरे कुछ भी ना रहेगा अगर मोहब्बत ना रहेगी।